अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणान अस्माकं भोज्य विधातनो नाम कृतनाजगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमा सदस्तात् सरः पो